Michi. It's hot.

रिलेशनशिप का लिटमस टेस्ट क्या होता है, क्या होना चाहिए, दिस इज समथिंग आई लर्न फ्रॉम माय एक्स बॉयफ्रेंड. वो मुझे एक सिंपल सी चीज कहता था, जब तक एक रिलेशनशिप में मजे आ रहे हैं द रिलेशनशिप इज वर्किंग फॉर यू. जैसे ही रिलेशनशिप में हंसना कम रोना ज्यादा हो जाए, द बैलेंस हैज गॉन क्रेजी, यू कैन डंप द पर्सन. एंड ही सेड दैट इवन फॉर हिमसेल्फ, व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड. आई ब्रोक अप विद हिम टेलिंग हिम यार मजे नहीं आ रहे. एंड ही लुक्ड एट मी एंड सेड मेरी बिल्ली मुझे को मैं आई वाज लाइक क्या कर सकते हैं, यही सच्चाई है. एंड वी ब्रोक अप. बट द ट्रूथ इज, अगर आपकी जिंदगी में भी रोना ज्यादा और हंसना कम है, you know what to do. और अगर वो करने में आपको कष्ट हो रहा है, why don't you hit me up and we'll talk about it. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So go ahead, do what you need to do. लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: आपको पता है ना कि मैं सीक्रेट्स के बारे में क्या कहती हूँ। अगर आपका एक ऐसा सीक्रेट है आपकी जिंदगी में जिसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है, कैसी लूजर जिंदगी है भाई।
1: द सीक्रेट बॉक्स।
0: एंड इफ ऑन द अदर हैंड यू आर अ ट्रू ब्लू रोशन, तब आपका हर सीक्रेट ऐसा होगा जो पूरे इंडिया को पता होना चाहिए। एंड इफ दैट इज द केस, फील फ्री टू हिट मी अप ऑन इंस्टाग्राम या फेसबुक। मेरा नाम है मिर्ची रोशे, नाम की स्पेलिंग है ROCHII। और एट दिस मोमेंट मैं आपसे आपका नाम नहीं पूछूंगी, बिकॉज यू विल बी माई मिस्ट्री कॉलर। और साथ में है मेरी मिस्ट्री कॉलर। हाई मिस्ट्री कॉलर।
2: हाई रोशी,
0: व्हाट्स अप?
2: Things are not very good right now.
0: क्यों, क्या हो गया? ये आपके कन्फेशन के बारे में है।
2: हाँ, obviously.
0: Yeah, tell me, yes.
2: So, एक शैम्पू आता है बच्चों का which says no more tears.
0: हाँ, correct.
2: So I thought let's try it because life में वैसे ही बहुत tears है।
0: हाँ, correct.
2: So I used this shampoo and I forgot for some reason to close my eyes.
0: हाँ, correct.
2: And When I used the shampoo, वो शैम्पू मेरी आंखों में गया और उसके बाद मेरी आंखों से आंसू ही आंसू आते रहे। So this shampoo is not the correct thing for you when you want to stop your tears, because आप रोते ही रहोगे। Because of this thing, I couldn't go to my office, I couldn't work only. मेरी आंखें इतनी जल रही थी क्योंकि
0: Bro, आंखें खोल के कौन शैम्पू करता अपने बाल?
2: वो I thought that you know some magic would happen in...
0: आपको सीरियसली रोशनिफिकेशन की जरूरत है। एक गहरी सांस लो और इस बार आप आंखें खोल सकते हो क्योंकि आपकी आंखों में से आंसू नहीं आएंगे।
3: You've been roshified.
0: If I have not told you, then I really love you, mystery caller. Thank you so much for this most amazing, most amusing story. क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में इतने सारे relationship confession सुने हैं, लेकिन you want to break up with your shampoo, that's kind of cute. और अगर आप भी ऐसे ही मेरे mystery caller की तरह कोई भी चीज़ confess करना चाहते हो, because आप और किसी को नहीं बता सकते, because you'll end up sounding really stupid, hit me up on Insta या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की spelling है ROCHII. So go ahead, John. मानू डू वट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

बस तेरा चले तो ले ले पूरा दिन हो तैयार तू घंटे न गिन मैं हूँ यही एच सर्विस टेक योर टाइम शॉरी यू डिजर्व इट हाथ मेरा थाम लेट मी मेक यू स्माइल आई लाइक योर स्वैग यू लाइक माय स्टाइल देती मुझे विंडो सीट खुद लेती आ जब भी होती लो तू मेरे

Energy. It's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे, फिर तू ले जा अपने

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका और अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है। सम स्पेशल सरप्राइजेस, ऑल दिस एंड मोर, तो सीधा शुरुआत करते हैं हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। मिका सिंह दैया द रैपर का गाना, गाने का नाम है छोरी। दो हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, छोरी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का गाना अ कोक स्टूडियो सॉन्ग, गाने का नाम है ए अजनबी। पिछले हफ्ते से ये गाना दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है। ए अजनबी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। छोरी ऑन नंबर 10, ए अजनबी ऑन गाना नंबर 9, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खां का गाना, इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। गाने का नाम है ए अजनबी। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हो गए, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: यू आर लिस्टिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। गाना नंबर 9 पर हमने आदित्य रिखारी एंड कुटले खां को एक गाने में सुना। आदित्य रिखारी हु इज द पॉप सेंसेशन, कुटले खां राजस्थान के फोक म्यूजिक को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो इतने अलग दुनिया के आर्टिस्ट सिर्फ कोक स्टूडियो ही एक गाने में ला सकता है। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो एक नई एंट्री है एंड दिस इज अ डेब्यू जो हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बिकॉज अदनान सामी इज बैक विद अ न्यू सॉन्ग। अदनान सामी के गानों के बारे में हम जैसे ही सोचते हैं तो वो पावरफुल रोमांटिक बैलेड्स याद आते हैं।

बट जो उनका नया वाला गाना है इट्स अ हाई एनर्जी पॉप प्रोडक्शन, रस्टिक इंडियन टेक्सचर्स भी हैं, थोड़े राजस्थानी इन्फ्लुएंसेस भी हैं, बट इट्स ऑल दैट अदनान सामी इज वेरी वर्सेटाइल. गाने का नाम एक्चुअली लिपस्टिक है. पूरा गाना हम अभी आपके लिए प्ले करने वाले हैं. दिस सॉन्ग इज ट्राइंग टू ब्रेक द स्टिग्मा अराउंड लिपस्टिक, स्पेशली हमारी इंडियन सोसाइटी में जहाँ थोड़ी बोल्ड लिपस्टिक लगा लिया, रेड शेड ज्यादा रेड हो गया तो ऑफिस में ही चार लोग टोक देते हैं. गाने की जो म्यूजिक वीडियो है फीचर्स वुमेन ऑफ ऑल जेनरेशंस, older women, small town characters, you will see someone you know in this music video. But the best part is how Adnan Sami is fully playing a character in the video. Expressive styling, very transformed look, unke surme pe dhyan dena. But gana unhone bahut fun banaya hai aur bahut waqt ke baad hum ek aisa high peppy pop gana sun rahe hain from Adnan Sami. Apne radio sets ki volume bada lijiye. Naya Navela gana debut kar raha hai seedha on gana number 8, Adnan Sami ki composition. Adnan Sami की आवाज में महिमा भारद्वाज के लिरिक्स. गाने का नाम है लिपस्टिक. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 8.

0: आना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: तो देख देख शीशा। मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, मिटर और एंड स्वरा वर्मा की आवाज। गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना दिलजीत दोसांझ का गाना डीलर, पिछले हफ्ते से 1 पोजीशन नीचे ड्रॉप करके ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। अभी के अभी कनेक्ट करो, फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम। कोई गाना शेयर करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। देयर आर सम आर्टिस्ट जो सिर्फ गाने नहीं बनाते हैं, वो प्रॉपरली अपने गानों से ऑडियंस की अटेंशन को होल्ड करना जानते हैं। And one of such artists is Himesh Reshammiya. He's back with a new song. Unke naye gaane ka naam hai Sharab. I really think Himesh could have chosen some other word for the song. Mujhe thodi problem hai. Lekin meri is problem se mujhe is gaane ke baare mein kya feel hota hai, wo change nahi hota. Interesting baat to ye hai that this song is absolutely through and through Himesh, but also sounds very new. Wahi larger than life energy hai. Kaafi dramatic sa romance hai. Ek instantly pakad mein aa jaane wala hook. But there is some twang in the song. That Rajat Nagpal effect aapko सुनाई देगा, जैसे कि किसी गाने को एकदम ग्लॉसी कोट कर दिया है। राणा सोतल के लिरिक्स हैं, द वीडियो फीचर्स मनुषी चिल्लर, सो द ओवरऑल पैकेज इज इनक्रेडिबल। इन फैक्ट आई वुड गिव थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर अश्काय हु मेड मी सी द म्यूजिक वीडियो, एंड देन मेरा थोड़ा सा ओपिनियन इस गाने के बारे में बदला, बिकॉज जब मैंने सिर्फ ऑडियो सुना आई थॉट यार ये गाना कैसे हिमेश के फैंस को पसंद आएगा, बट देन दैट्स व्हाट हिमेश रेशमिया डज, किसी ना किसी तरीके से हमारा अटेंशन ग्रैस्प कर लेते हैं। एंड आई स्वेयर जब मैंने म्यूजिक वीडियो के साथ ये गाना ना तो मैंने वापस रिपीट किया और वापस म्यूजिक वीडियो देखा। चाहे आप सीरियसली सुनो, नॉस्टैल्जिक होके सुनो, आयरोनिकली सुनो, यू विल टॉक अबाउट हिमेश रेशमिया एंड हिज न्यू सॉन्ग। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। हिमेश रेशमिया का गाना, रजत नागपाल, राणा सोतल की कॉम्पोजिशन, लिरिक्स, गाने का नाम है शराब। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: हिमेश रेशमिया की आवाज में दैट वॉज शराब ऑन आर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट। अश्काय और मैं बेट कर रहे हैं दैट ये गाना कब डेब्यू करेगा, अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते। मेरे को लगता है कि ये गाना नंबर 5 से 7 के बीच में डेब्यू करेगा। व्हाट डू यू थिंक? If you want to predict, at RJ Kanika पर आके मुझे बताओ। Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी। दिलजीत दोसांझ सिया का गाना, गाने का नाम है रांझा। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, रांझा is playing right next for you on गाना नंबर 5। You are listening to गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। Enjoy।
1: Number 5।

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।

0: करण औजला 21 का गाना फ्रॉम पी पॉप कल्चर 25 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बॉयफ्रेंड इज ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो स्वागत है आपका, दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली रियली जेन्युइनली आई स्वेयर प्रॉमिस आई बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहां पर मैं 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने आपके साथ शेयर करती हूँ। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज

गाने का नाम है तेरा चेहरा बाय द वन एंड ओनली अदनान सामी। ये गाना साल 2002 में रिलीज हुआ था, अदनान सामी की एल्बम तेरा चेहरा का ही पार्ट है। म्यूजिक खुद अदनान ने कंपोज किया था, लिरिक्स समीर के हैं एंड इस गाने की वीडियो में है रानी मुखर्जी। उस साल की सबसे सक्सेसफुल पॉप एल्बम्स में से एक थी तेरा चेहरा। आई रिमेम्बर इस एल्बम के थ्रू ही हम अदनान सामी की दुनिया से इंट्रोड्यूस हुए थे एंड कुछ इतनी मैसिव कोलैबोरेशंस थे इस एल्बम में विद रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन। बट जो ये गाने हमें आज याद हैं, ना ही ये कोलैबोरेशंस की वजह से हैं, ना ही उन गाने म्यूजिक वीडियोस की वजह से, इट्स बिकॉज ऑफ द म्यूजिक, इट्स बिकॉज ऑफ द कंपोजिशन। गाना नहीं भाई, अदनान सामी पूरा माहौल बनाते थे। उनका हर गाना एक मिनी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लगता था। पियानो स्ट्रिंग्स, वो स्ट्रेच्ड आउट लॉन्गिंग इन हिज वॉइस, ऐसा लगता है कि बस गाना आपके लिए ही गा रहे हैं। स्पेशली द सॉन्ग तेरा चेहरा, द लिरिक्स, ये जमीन रुक जाए आसमां झुक जाए, इतना ड्रामा, उफ। एंड अदनान सामी की वॉइस जस्ट टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल, चीजी एंड हाउ। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, अदनान सामी एट हिज अल्टीमेट बेस्ट, साल 2002 का गाना अदनान सामी की आवाज में, दिस इज तेरा चेहरा ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका, एंजॉय।

मैन ओ मैन, तेरा चेहरा इज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स दैट नॉस्टैल्जिया नहीं बल्कि एक पूरा जमाना याद आ जाता है. अदनान सामी की आवाज में दैट वॉज तेरा चेहरा ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ एंड दिस इज वेयर गाने शेयर करने की बारी आती है. 90s या 2000s का वो कोई भी आइकॉनिक इंडी पॉप गाना जिसको आज भी आप सुन के फुल नॉस्टैल्जिक हो जाते हो, हमसे आके शेयर करो. एट आरजे कनेका पर अपना रिकमेंडेशन दो. अशकाय मेरा साउंड प्रोड्यूसर और मैं, हम बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार करते हैं आपके रिकमेंडेशंस के. वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. संजू राठौर का बैंगल्स पिछले हफ्ते से एक पोजिशन ऊपर जंप करके दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 3. उसके बाद अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है अर्ज किया है. कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग 17 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. अर्ज किया है इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 2. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। द शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। नाउ गाना नंबर 10 से गाना नंबर 2 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। बिफोर आई टेक यू टू द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, एक क्विक रिकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। इस हफ्ते गाना नंबर 10 पर था मीका और दया द रैपर का छोरी। देन आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खा का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 9। गाना नंबर 8 पे डेब्यू किया अदनान सामी के गाने लिपस्टिक ने। दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन गाना नंबर 7। देन मिट्टा रौर का शीशा ऑन गाना नंबर 6।
2: तेरी आंखें पीछे लगे सुन दो ना छोरी का हर रंग।
1: दिलजीत एंड सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 5। करण औजला 21-25 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार बॉयफ्रेंड दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। संजू राठौड़ का बैंग गर्ल्स ऑन गाना नंबर 3। फिर हमने सुना अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 2।
3: कायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें ये इश्क में।
1: इट्स टाइम फॉर द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, यानी इस हफ्ते का गाना नंबर 1। दिस सॉन्ग इज एब्सोल्यूट ट्रीट, व्हाट अ ब्यूटीफुल मिक्स इन दिस काउंटडाउन। गाने का नाम है बैरन, एक हरियाणवी सॉन्ग जो मुझे पता है कि आपके इंस्टाग्राम के हर तीसरे स्क्रोल में आप ये गाना सुन रहे हैं। बंजारे की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, उन्हीं की आवाज। बैरन इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 1। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
0: नंबर 1।

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: हर फ्राइडे बॉलीवुड डिसाइड करता है कि इस हफ्ते कौन सी कहानी ट्रेंड करेगी, कौन सा हीरो मास्क लगेगा, कौन सा ट्रेलर इंटरनेट तोड़ देगा एंड कौन सा गाना शादियों में बजेगा। लेकिन असली सवाल हमेशा सेम रहता है, इस शोर में क्या टिकने वाला है? क्योंकि हाइप तो बहुत चीजों की बन जाती है लेकिन लेगेसी बहुत ही कम की होती है। एंड इस वक्त हिंदी सिनेमा एक अजीब से फेज में है। सुपरस्टार्स अब भी बड़े हैं लेकिन ऑडियंस उनसे भी बड़ी हो चुकी है। हम इंस्टेंटली जज करते हैं, इंस्टेंटली ट्रोल करते हैं, इंस्टेंटली वर्शिप करते हैं। एक रील करियर बना देता है और एक फ्राइडे नैरेटिव बदल देता है। लेकिन फिर भी हर हफ्ते कुछ गाने ऐसे आते हैं जो शोर को काट देते हैं, कुछ फिल्म्स जो सिर्फ चलती नहीं कल्चर बन जाती हैं, एंड कुछ आवाजें जो प्रूव करती हैं कि बॉलीवुड अभी भी दिल से जिंदा है। तो चलो इस हफ्ते के बिगेस्ट सॉन्ग्स, बिगेस्ट स्टोरीज और बिगेस्ट बॉलीवुड पल्स को डीकोड करते हैं। दिस इज द मिर्ची टॉप 20 एंड आई एम योर होस्ट सुरेन सुंदरम। एंड गाड़ी शुरू होती है विद द मोस्ट डोमिनेंट फिल्म एंड उसका ये डोमिनेंट टाइटल ट्रैक। आपने सुना है, बहुत बार सुना है।
3: नंबर 20।

बॉलीवुड में अगर किसी कंपोजर ने हमें ये सिखाया है कि म्यूजिक सिर्फ सुना नहीं, फील किया जाता है, then it has to be A.R. रहमान। लेकिन रहमान साहब का म्यूजिक आजकल पहले जैसा इंस्टेंट हिस्टेरिया क्रिएट नहीं करता, और शायद वो प्रॉब्लम नहीं है, शायद वो डिजाइन है, क्योंकि रहमान साहब के गाने फास्ट फूड की तरह, बर्गर्स, पिज्जाज की तरह बिल्कुल नहीं होते। दे आर लाइक स्लो पॉइजन। पहली बार सुनो कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, दूसरी बार सुनो तो इंट्रीगिंग लगते हैं, और फिर एक दिन अचानक गाना आपके अंदर घर बना लेता है। रहमान साहब मेलोडी को स्पून फीड नहीं करते, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, टेक्सचर्स, साइलेंसेस, ट्रेन साउंड, स्पिरिचुअलिटी, लॉन्गिंग, और इसीलिए उनके गाने वायरल कम होते हैं, डिस्कवर ज्यादा किए जाते हैं।

0: इनिशियली लोग बोल रहे थे ये तो बहुत डीप है, आज ये एक इमोशनल एंथम बन गया है। और अब मस्कारा को देखो, फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, इम्तियाज अली, दिलजीत दोसांझ, रहमान साहब, इरशाद कामिल, ये कोई लाउड चार्ट बस्टर नहीं है, ये वो टाइप का गाना है जो शायद 3 महीने बाद सडनली आपको हिट करेगा। और ऑनेस्टली मुझे लगता है बॉलीवुड का नेक्स्ट बिग म्यूजिक ट्रेंड यही होने वाला है, द स्लो बर्न एल्बम्स, एल्बम्स जो पहले ग्रो करती हैं और फिर एक्सप्लोर करती हैं। एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ विद चांद मेरा दिल। पहले लोग बोल रहे थे यार अच्छी एल्बम है, अब हर हफ्ते एक नया गाना इमर्ज हो रहा है और इस वक्त द लेटेस्ट वन इज मेकिंग सीरियस नॉइज। फ्रॉम चांद मेरा दिल, कंपोज बाय सचिन जिगर, राघव चैतन्य और जुनीता गांधी की आवाज में, दिस इज खासियत, डेब्यूइंग ऑन नंबर 18।
1: नंबर 18।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi, it's hot. Sureen ke saath, only on Mirchi, it's hot. Number 14.

0: बॉलीवुड का मूड कितनी जल्दी स्विच होता है। अभी जो गाना आपने सुना प्रेम की लीला फ्रॉम कृष्णावतारम, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और जावेद अली ने। ट्रेडिशनल कॉम्पोजिशन है, ओल्ड स्कूल डिवोशन, नो ईडीएम ड्रॉप्स, ना कोई फोर्स्ड कूलनेस, बस सुर है, भाव है और सिंसियरिटी है। एंड देखो, ऑडियंस ने उसे सीधा दिल में जगह दे दी। डेब्यू किया इस गाने ने नंबर 14 पर, और शायद इसीलिए म्यूजिक का साइंस अब पहले से ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है, क्योंकि कब क्या कनेक्ट कर जाए नोबडी नोज एनीमोर। और इस साल का सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए था कॉकटेल का वो गाना जब तलक। यार जरा सोचो, अरिजीत सिंह, प्रीतम दा, अमिताभ भट्टाचार्य, एंड देन यू गॉट शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना एंड कृति सैनन। ये लाइनअप देख के तो लगता है कि गाना चार्ट पे आएगा नहीं, सीधा कब्जा कर लेगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। गाना आया तो सही, लेकिन इम्पैक्ट नहीं बना। इनफैक्ट टॉप 10 तक भी नहीं पहुंच पाया, और क्वाइटली इस काउंटडाउन से एग्जिट मार चुका है। और शॉक इसलिए भी ज्यादा लगता है क्योंकि शाहिद और प्रीतम दा का म्यूजिकल पार्टनरशिप तो हिस्टोरिकली लीथल रहा है।
1: साड़ी के पाल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे।
0: ये वो कॉम्बो है जो फुल मैडनेस को भी एक म्यूजिकल इवेंट बना देता था। इसके बाद जरा सा मूड स्विच कर लो।

0: घाट का पानी। एंड सडनली वो सेम डुओ हार्टब्रेक को इतना सॉफ्ट बना देता है कि आदमी खिड़की के बाहर देखना शुरू कर देता है, वो भी बिना किसी रीजन के। एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट दिस सॉन्ग।
1: तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही।
0: बस यार ये गाना तो कल्चरली इमॉर्टल है। ऐसे गाने रिलीज नहीं होते, अडॉप्ट किए जाते हैं। इसलिए जब तलक का इतनी जल्दी फेड हो जाना जेन्युइनली अनएक्सपेक्टेड था एंड मेरे लिए काफी शॉकिंग भी। लेकिन फ्रीदंदा का गेम खत्म समझना गलती होगी। भूत बंगला का राम जी आके भला करेंगे नंबर 13 पर पहुंचा इस हफ्ते। लेकिन कॉकटेल का जो अपकमिंग गाना है माशूका, वो मैंने सुना है एंड दैट वन साउंड्स फार मोर डेंजरस। लेकिन अभी फ्रॉम एन ईरा व्हेन शाहिद कपूर एंड प्रीतम दा सिंपली कुड नॉट मिस, ये वाला गाना है फ्रॉम मौसम जिसे गाया है शाहिद माल्या ने। रब्बा मैं तो मर गया ओए, माय पिक ऑफ द वीक है।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 5।

कभी कभी एक फिल्म खत्म होने के बाद भी वो खत्म नहीं होती। धुरंधर और धुरंधर 2 एग्जैक्टली वैसी ही फिल्म्स निकली। सिर्फ बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं, कल्चरल टेकओवर किया। मीम्स आए, फैन एडिट्स आए, एक्शन सीन्स वायरल हुए। लेकिन सबसे डेंजरस चीज पता है क्या हुई? डायलॉग्स जो है वो हमारे दिलो दिमाग में घुस गए। और ऑनेस्टली बॉलीवुड को इसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि आजकल हम देखो फिल्म्स देखते तो बहुत हैं, लेकिन याद हमें बहुत कम रहती हैं। क्योंकि एक वक्त था जब हिंदी सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता था, रोजमर्रा की भाषा हुआ करती थी। कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तुमसे ना हो पाएगा। ये लाइन से स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं थी, ये इंडिया का पॉप कल्चर सॉफ्टवेयर थी। लेकिन आज 1000 करोड़ की फिल्में आ रही हैं, लेकिन थिएटर से बाहर निकलते ही आधे से ज्यादा डायलॉग्स मेमोरी से लॉग आउट कर जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि या तो फिल्म्स रियलिज्म में इतनी धीमी हो गई हैं कि कोई लाइन हवा नहीं पकड़ती, या फिर हर दूसरा डायलॉग एक मास मोमेंट बनने की इतनी कोशिश करता है कि असली स्वैग गायब हो जाता है। आइकॉनिक डायलॉग्स लिखे नहीं जाते यार, वो फील होते हैं। और धुरंधर ने हमें याद दिलाया कि बॉलीवुड जब डायलॉगबाजी सही करता है ना, तो ऑडियंस सिर्फ तालियां नहीं बजाती, वो डायलॉग्स घर ले जाती है। इस हफ्ते का गाना नंबर 4 इज ऑल्सो अ धुरंधर। नंबर 4।

लेकिन अब एक स्पेशल गाना, एक ऐसी फिल्म से जिसके डायलॉग्स लिटरली इंडियन पॉप कल्चर की परमानेंट प्रॉपर्टी बन चुके हैं। फ्रॉम जब वी मेट, कोई डाउट मत रखना दिल में, सिखनी है ये भटिंडा की।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर थ्री
3: वाह

रूही दसदा ने सिर्फ चार्ट्स क्लाइम नहीं किए, ऑनेस्टली उसने अक्षय कुमार के बॉक्स ऑफिस कॉन्फिडेंस को CPR दे दिया है। लेकिन इस वक्त बॉलीवुड का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर कॉन्वर्सेशंस थिएटर्स में नहीं, टेलीग्राम ग्रुप्स में चल रहा है। धुरंधर 2 द रिवेंज द सेकंड पार्ट, बेसिकली इंडिया में इसके OTT रिलीज का वेट इतना इंटेंस था ना कि लोग लिटरली काउंट डाउन कर रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म पहले एक प्लेटफॉर्म पे आनी थी और फिर 2 हफ्ते बाद दूसरे प्लेटफॉर्म पे आनी थी, और इन दोनों OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन भाई EMI लगने लगे थे। और फिर बीच में मेकर्स ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, फिल्म को इंटरनेशनली रिलीज कर दिया 14 मई को। बस गेम ओवर, क्योंकि बॉलीवुड अभी तक ये बात समझ नहीं पाया है कि इंटरनेट को ज्योग्राफी समझ नहीं आती। अगर आपकी फिल्म दुनिया के किसी भी कोने में अगर एक बार किसी OTT प्लेटफॉर्म पे आ गई तो 2 घंटे में वो पायरेटेड वेबसाइट्स पर भी आ जाती है, और वो भी कोई 240 पिक्सल वो सिनेमा हॉल वाला प्रिंट वाली क्वालिटी नहीं, जिसमें बीच में किसी की परछाई नजर आती है, पिक्चर हिल रही होती है या साउंड बिल्कुल बकवास होता है। आई एम टॉकिंग ऑफ प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर 4K फाइल। अब तो सोशल मीडिया पे लोग रिव्यूज से ज्यादा लिंक्स एक्सचेंज कर रहे हैं। पहले लोग पूछते थे कि भाई स्टोरी कैसी है, अब लोग पूछ रहे हैं भाई लिंक है क्या तेरे पास। और ये बहुत ही डेंजरस साइन है, क्योंकि एक वक्त था जब पायरेसी कन्वीनियंस की वजह से होती थी, आज पायरेसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो रही है। ऑडियंस फिल्म देखना तो चाहती है, इनफैक्ट इमीडिएटली देखना चाहती है, लेकिन अफोर्डेबल तरीके से देखना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब फिल्म देखने के लिए एक आदमी को 3 apps, 4 passwords, 5 subscriptions और 15-20 एड से गुजरना पड़ता है। और इसीलिए पायरेसी फिर से एक डरावना कमबैक कर रही है। और आयरनी देखो ना, जिस फिल्म को लोग इलीगली हंट कर रहे हैं उसी फिल्म का गाना 14 हफ्तों से इंडिया का नंबर 1 गाना बना हुआ है, फ्रॉम धुरंधर शरारत। और ये शरारत सच में महंगी पड़ गई। नंबर 1।

0: The Mania is still on, but शरारत बाकी गानों से ज्यादा पॉपुलर निकलेगा ये कभी नहीं सोचा था। एक और टाइटल ट्रैक है इश्क चला कर है, गहरा हुआ आरी आरी, इनको सुन के लगा था कि ये शायद आगे निकल जाएंगे, बट नो, शरारत इट इज। बढ़े या मेरी थोड़ी ना चलती है, इट इज यू एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम मिर्ची टॉप 20 के एक नए एपिसोड के साथ। अंटिल देन सरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: कुड़िए ने मेरे दिल विच वस जा कुड़िए ने तेरे बिन मैं नहीं हो जचदा

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: अर बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन दी बात कोर्सी।
1: अर 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

मिर्ची, इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

अटेंशन प्लीज, अगर तुमने सुबह का अलार्म 5 बार स्नूज कर दिया है ऑलरेडी, दैट मीन्स यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप विथ योर स्लीप साइकिल. गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला, शो का नाम है मिर्ची. मॉर्निंग जरिए अभी अभी शुरू हुआ है एंड देसी लाइफ इन अमेरिका इज ट्रूली नेक्स्ट लेवल. पेरेंट्स इंडिया से सोच रहे होते हैं यू आर लिविंग द फॉरेन ड्रीम, मीन वाइल यू आर स्टैंडिंग इन कॉस्को एट 8 AM वंडरिंग व्हाई ब्लूबेरीज कॉस्ट मोर देन योर चाइल्डहुड एम्बिशंस. बट चलो यार, whether you're driving to work right now या फिर pretend कर रहे हो work from home करने का, या फिर secretly you're eating leftover biryani for breakfast, this is the show where you get a little slice of life, little slice of home with extra tadka. तड़का लगता है Bollywood की gossips का, feel good vibes का, around the world की खबरों का, और साथ साथ में थोड़ी सी यहाँ वहाँ की बातें. And of course I've got a killer playlist for you my people. एकदम मिर्चीदार झिंटक गाने में तुम्हारे लिए प्ले करने वाली हूँ फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स. मेरा नाम है प्रिसिला. ऑल्सो ह्यूज वार्म हग टू एवरीवन सेलिब्रेटिंग ईद. ईद मुबारक फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट मिर्ची मॉर्निंग्स, ओनली योर फेवरेट ब्रेकफास्ट शो. फटाफट से जाकर मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप भी चाहिए 9033 मिर्ची, दैट्स माय व्हाट्सएप नंबर 9033647244. सब नोट कर लिया है तो अब आने वाले हैं मिर्चीदार बैंगर्स. Only for you. Sit back, relax, and good morning, Mirijana.

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स का वो सेगमेंट जहाँ पर हम हिस्ट्री की क्लास लगाते हैं। सो लेट्स टाइम ट्रैवल टुगेदर। सबसे पहले चलते हैं 1930 में, डिज्नी रिलीज द थ्री लिटिल पिग्स। 1937 में सैन फ्रांसिस्को's आइकॉनिक गोल्डन गेट ब्रिज ऑफिशियली ओपन्ड टुडे। 200,000 पीपल वॉक्ड अक्रॉस इट ऑन डे वन। 1939 में बैटमैन मेड इट्स फर्स्ट अपीयरेंस एवर। एंड ऑनेस्टली उसके बाद से हर देसी बच्चा अब्रॉड ऑल्सो विशेस फॉर अ डबल लाइफ। और हम तो जी भी रहे हैं, डे टाइम में कॉर्पोरेट एम्प्लॉय और नाइट टाइम में शेफ एंड इमोशनल सपोर्ट फॉर रिलेटिव्स इन इंडिया। देन इन 1964 इंडिया लॉस्ट जवाहरलाल नेहरू जी, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, अ लीडर हु हेल्प्ड शेप मॉडर्न इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। एंड इन 1998 पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट एंड ऑफिशियली बिकेम अ न्यूक्लियर पावर। और कुछ ऐसे चाय फ्रेंडली हिस्ट्री नगेट्स तुम्हें पता है तो फटाफट से मुझे डीएम करो। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। एंड अ क्विक रिमाइंडर, इफ योर प्लेट इजंट ओवरफ्लोइंग आज के दिन विद ईद के पकवान, आर यू इवन डूइंग ईद करेक्टली? ईद मुबारक टू एवरीवन सेलिब्रेटिंग टुडे। मे योर डे बी फिल्ड विद पीस, लाफ्टर, फैमिली, अनलिमिटेड बिरयानी एंड लॉट मोर। Stay tuned and stay hot.

देखो, मुझे लाइफ में बॉडीगार्ड चाहिए ताकि मैं खुद के पैसे खुद से प्रोटेक्ट कर सकूं। मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। गुड मॉर्निंग गाइस एंड लिसन टू दिस। एक्टर राम चरण हैज रिपोर्टेडली हायर्ड एन एमएमए फाइटर एज हिज बॉडीगार्ड एंड अपेरेंटली ही इज बीइंग पेड अराउंड 2 to 4 lakh रुपीज पर डे। मीनवाइल हमारे देसी पेरेंट्स आफ्टर हियरिंग दिस आर लाइक, बेटा तुम भी जिम ज्वाइन कर लो, इंजीनियरिंग तो वैसे भी तुम्हारे किसी काम नहीं आ रही है। द बॉडीगार्ड्स नेम इज केविन कुंटा। ओरिजिनली ही इज फ्रॉम गैम्बिया एंड पार्ट ऑफ इटलीज नेशनल एमएमए टीम बैक इन 2021। एंड नाउ ही इज अकंपनिंग रामचरण ड्यूरिंग प्रमोशंस फॉर हिज अपकमिंग मूवी पेडी। देखो, आजकल बॉलीवुड के प्रमोशंस ऐसे फील होते हैं जैसे एवेंजर्स के ऑडिशंस चल रहे हैं। पहले ना स्टार्स अपने सनग्लासेस पहनते थे, काले कपड़े, काली कॉफी लेकर ऐसे ट्रैवल करते थे जैसे यूएफसी की एनर्जी डिस्प्ले कर रहे हो। एंड इमेजिन बीइंग दैट प्रोटेक्टेड। और मैं तो यार टारगेट तक भी नहीं जा सकती विदाउट वन आंटी आस्किंग मी, भैया हो गया तुम्हारा, कांप काहे रही हो, वेयर इज माय एमएमए बॉडीगार्ड यार, जब ऐसे रिलेटिव्स ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। बट ओके, रिस्पेक्ट वेयर इट्स ड्यू। सेलिब्रिटी क्राउड्स कैन गेट इंटेंस एंड सेफ्टी ऑलवेज कम्स फर्स्ट। लेकिन स्टिल 4 lakh रुपीज पर डे, मैं सोच रही हूँ आर्जिंग छोड़कर बॉडीगार्ड ही बन जाती। थोड़ी बॉडी वॉडी बनानी पड़ेगी, बट व्हाट डू यू थिंक, बताओ मुझे डीएम करके मैं कैसी लगूंगी बॉडीगार्ड बनके और किसका बॉडीगार्ड मुझे बनना चाहिए। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। फिलहाल तुम्हारे माइंड एंड हार्ट को गार्ड करने के लिए मिर्ची दर बैंगर्स प्लेइंग राइट हियर राइट नाउ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: वाह वाह वाह वाह, क्या गाना है। मैं हूँ प्रसुला, तुम्हारे साथ में सुन रही हूँ तो मिर्ची मॉर्निंग्स, जहाँ पे तुम्हें मिलता है मिर्चीदार ऑसम म्यूजिक, ऑफ कोर्स थैंक्स टू माय प्लेलिस्ट। और अभी लेट्स चेक आउट हमारे वेदर का हालचाल क्या चल रहा है। राइट नाउ इट्स अराउंड 66 डिग्रीज फारेनहाइट एंड क्लाउडी, बेसिकली हुडी वेदर है फिलहाल, विद अ साइड ऑफ डू आई रियली नीड टू गो टू वर्क, जो कि मुझे रोज ही लगता है। हेड्स अप दो, थंडरस्टॉर्म्स आर एक्सपेक्टेड टिल 9 AM। सो अगर तुमने बालों को सवार में 2 घंटे लगाए हैं तो आई एम जस्ट गोना से क्यूट, बट डोंट पैनिक, द रेस्ट ऑफ द डे इज लुकिंग प्रीटी डीसेंट विद पार्टली क्लाउडी स्काइज एक्सपेक्टेड अराउंड 5 PM। टुडेज टेम्परेचर इज हैंगिंग बिटवीन 66 डिग्रीज फारेनहाइट टू 82 डिग्रीज फारेनहाइट एंड ऑनेस्टली दैट्स क्लासिक कंफ्यूज्ड वेदर। सुबह सुबह तुमसे चाय और ब्लैंकेट मांगेगी, आफ्टरनून कहेगा वेयर इज माय सनस्क्रीन एंड इवनिंग में फिर से शॉल की जरूरत पड़ सकती है। गुड न्यूज दो, आज 0 mm की बरसात होने वाली है एक्सपेक्टेड ओवरऑल इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। सो डू योर लॉन्ड्री एंड फाइनली Stop living indoors. You can go out, have some coffee, meet some friends. And aaj ka high jo hai, it's pretty similar to yesterday's high. Kal 83 degrees Fahrenheit hit kiya tha and today it's gonna be around 82 degrees Fahrenheit. Thoda sa difference hai. It's just like saying I'm consistent but your boyfriend is not. So isi tarah weather ka hal chal janne ke liye mujhe sunte raho. Mera naam hai Priscilla. Show ka naam hai Mirchi Mornings. Mujhse connect karo Insta aur X par. Mera handle name hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033 647 244. अभी चलाते हैं कुछ गर्मा गर्म गाने तुम्हारे लिए। स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट। रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची, इट्स हॉट। I like the way you move right there.

All right, welcome to the second hour of Mirchi Mornings. My name is Priscilla, and now we are going to check out the stories from around the world. Mirchi Hour Got 3. सबसे पहले बायजूस फाउंडर बायजू रविंद्रन हैज रिपोर्टेडली बीन सेंटेंस टू 6 months इन जेल इन सिंगापुर ओवर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इश्यूज एंड यस द इंटरनेट इज शॉक्ड बिकॉज दिस इज द सेम गाय हु वंस बिकेम अ बिलियनेयर थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन एंड नंबर टू पर एमिड एन इंटेंस हीट वेव इन पेरिस केओस रिपोर्टेडली ब्रोक आउट ऑन अ पेरिस टू नाइस ट्रेन आफ्टर पैसेंजर्स स्टार्टेड स्ट्रगलिंग टू ब्रीद बिकॉज देर वॉज नो एसी ऑन बोर्ड यस नो AC in a heat wave. The train eventually had to stop mid-journey, causing around a 4-hour delay. Viral videos now show passengers standing outside on railway tracks trying to catch their breath, drink water and cool down in the shade. And finally, number 3 per CSK CEO Kasi Vishwanathan has spoken about MS Dhoni's IPL future amid all the speculation online. He basically said Dhoni will decide his own future and CSK will respect whatever role he chooses, player, coach, mentor, or anything else. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour with me, Priscilla. So, do the Mirchi Mornings. Mujhe follow karo Insta aur X par. Mera handle name hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला। सुन रहे हो तो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। एंड लिसन टू दिस, अ नाइजीरियन पॉलिटिशियन हु क्लेम्ड ही वाज 30 इयर्स ओल्ड एंड हैड ड्वार्फिज्म हैज रिपोर्टेडली टर्न्ड आउट टू बी just 16 years old after a passport leak revealed his actual age. His name is Mehmood Sadis Buba. Apparently, he told supporters he was 30 so he could qualify to run for the National Assembly elections in 2027. But once the passport leak happened, he withdrew from the race. Bro, this is why desi parents are like, har cheez ka document rakhna chahiye, kyunki documents kabhi jhoot nahi bolte. Also, imagine being exposed by your very own passport. And honestly, South Asians abroad understand this very, very deeply. One age on arranged marriage ka bio data, another age on LinkedIn, and completely different emotional age after paying the rent in dollars. Okay, that's enough life lesson for the day. Let's talk about some sparkle right now. Shout out to RK Jewels, jahan pe tumhe mil rahe है रियल डायमंड ज्वेलरी एट रियल प्राइजेस। यहाँ पर कोई झोलझाल नहीं है, यहाँ पर तुम्हें पे करने हैं जीरो हिडन चार्जेस, जीरो लेबर चार्जेस या जीरो एक्स्ट्रा चार्जेस, और वो भी खालिस गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी तुम्हें मिल रही है। तो ऐसा मौका कोई कैसे जाने दे भला, वो भी ईद के इस स्पेशल ओकेजन पर। तो तुम्हारी ईद की ज्वेलरी शॉपिंग तो सेट हो चुकी है, फटाफट से पहुंचो आरके ज्वेल्स पर, जहाँ पर बेस्ट क्वालिटी मिलती है बेस्ट प्राइस पर। ऑफकोर्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। हाल बने रहो प्रिसिला के साथ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, और फटाफट से जाओ मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। आने वाले कुछ मिर्ची दार बैंगर्स, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: राइट, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स, और आप सुनने वाले हो गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट।
1: जूल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,500, $4,500 पर ट्रेड के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस कल से डाउनवर्ड ट्रेंड पर हैं, नीचे ट्रेड कर रहे हैं। गोल्ड में डेफिनेटली एक एंट्री पॉइंट बनता है। गोल्ड में जो इन्वेस्ट करना चाहें, इन्वेस्टर गोल्ड बार्स 1 ounce, 100 grams, किलो बार्स, पैम सर्टिफाइड गोल्ड और सिल्वर अवेलेबल एट राज ज्वेल्स। आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए हिंदुस्तान से, जो अबाउट 15% सस्ता है अमेरिका में गोल्ड की प्राइस, गोल्ड बार्स में इन्वेस्ट करें राज ज्वेल्स के था। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: दैट वाज योर गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट विद मी प्रिसला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टा और एक्स पर फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. वेलकम टू द लास्ट आवर ऑफ मिर्ची मॉर्निंग्स एंड नाउ वी हेड स्ट्रेट इनटू मिर्ची आवर का 3. सबसे पहले अ हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट आउट ऑफ वर्जीनिया. एन इंडियन ओरिजिन वुमन नेम्ड मेघना बेन पटेल वॉज ट्रेजिकली शॉट ड्यूरिंग अ सस्पेक्टेड रॉबरी अटेम्प्ट एट अ सुपरमार्केट वेयर शी हैड रिपोर्टेडली वर्क्ड फॉर 10 इयर्स. सीसीटीवी फुटेज ऑफ द इंसिडेंट हैज सर्फेस्ड एंड द केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन. सेंडिंग थॉट्स एंड प्रेयर्स टू हर लव्ड वंस बिकॉज नो फैमिली शुड गेट अ फोन कॉल लाइक दैट. नंबर टू पर द पुणे पोर्शा केस इज बैक इन कॉन्वर्सेशन आफ्टर अ वायरल वीडियो शोड the accused juvenile's father Vishal Agrawal reportedly celebrating after getting bail, and the case continues to remain a huge talking point online. And finally, number 3 per US Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. went viral after posting a video casually picking up two snakes with his bare hands in Florida. Apparently, one snake even tried to bite him while his wife can be heard saying, "Honey, let them go, please." And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. With me, Priscilla on Mirchi Mornings. Connect karo mujhse Insta aur X par. Mera handle name hai Mirchi Pris. And WhatsApp par mera number hai 9033Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। अब बारी आ चुकी है हमारा भविष्य जानने की।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: एरीज यानी मेष राशि, आज जुबान पर थोड़ा सा कंट्रोल करो। ओके, यू आर रेडी टू रोस्ट एवरीवन बिफोर ब्रेकफास्ट, बट स्टार्स आर सेइंग मेबी डोंट फाइट अथॉरिटी टुडे। ओके, लकी कलर फॉर यू इज सिल्वर, लकी नंबर इज 11। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, स्टॉप प्रिटेंडिंग आई एम फाइन व्हेन क्लियरली यू नीड चाय एंड इमोशनल सपोर्ट। ओपन अप टू लव्ड वंस टुडे। आज का लकी कलर इज रोज गोल्ड, लकी नंबर इज 22। जेमिनी यानी मिथुन राशि, समवन मे नॉट लाइक योर bold opinions today, but honestly, when has that ever stopped a Gemini? Lucky color for you is neon green, lucky number is 5. Cancer yani Karak Rashi, don't overthink every tiny thing yaar, you are stronger than your browser history of panic googling, trust yourself today. Lucky color for you is crimson, lucky number is 18. Leo yani ki Sinha Rashi, you're craving an escape from routine, take that mini break, solo drive or dramatic target walk, main character energy ko activate karo dost. Lucky color for you is ivory, lucky number is 3. Virgo yani Kanya Rashi, you actually have more control than you think today, push the right buttons emotionally, professionally, mentally and physically, not microwave buttons randomly. Aaj tumhara lucky color is teal and lucky number is 14. And that's it for Rashi Zone part 1. Thodi si der mein part 2 lekar aungi main, bole to Priscilla on Mirchi Mornings. Tab tak ke liye tum ye Mirchi Dar Banger suno, mujhe jaakar follow karo. Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X. Thoda sa chill maro, relax karo aur stay tuned raho.

0: वेलकम बैक, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, और यहाँ पर हम स्टार्स की बातें पता करेंगे।
1: मिर्ची राशि।

देखो डांस लाइक नोबडी इज वॉचिंग के लिए करेज चाहिए होता है. मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स एंड इट्स टाइम फॉर मी टू रैप अप. लेकिन जाने से पहले, एक्ट्रेस रिधिमा पंडित रिएक्टेड टू अ वायरल रील ट्रोलिंग अनन्या पांडे's भरतनाट्यम फ्यूजन डांस सीक्वेंस फ्रॉम चांद मेरा दिल, जो उनकी लेटेस्ट रिलीज है. अपेरेंटली द रील जोक्ड दैट अनन्या लर्नड भरतनाट्यम फ्रॉम एन ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड रिधिमा सिंपली कमेंटेड गट्स. Honestly, internet comments these days deserve their own filmfare category. किस एक्टर ने सबसे ज्यादा बुरे कॉमेंट्स झेले हैं थ्रू आउट द ईयर, उनको एक अवार्ड मिल ही जाना चाहिए. क्योंकि एक रॉन्ग मूवी, एक रॉन्ग डांस स्टेप, एक रॉन्ग डायलॉग, ये सब के बाद everyone starts judging these celebrities. But hey, putting yourself out there publicly is not easy, यार. तुम किसको डेट करे, तुम मोटे हो गए, पतले हो गए, तुम कौन सी फिल्म करे, ये सब कुछ पर जज किया जाता है. आई मीन कॉन्फिडेंस की तो वाट लग जाती होगी, राइट? And despite that trolling, the film starring Ananya and Lakshya has actually been receiving positive reviews from critics. So moral of the story ye hai, just do your thing. Because no matter what you do, somewhere someone online or offline is going to judge you. So karo jo karna hai, khao, piyo, aish karo. Aur isi note par, Eid Mubarak to everyone celebrating today. May your homes be full of happiness, your biryani perfectly layered and your Eidi emotionally satisfying. Thank you. For hanging out with me this morning. Main hoon Priscilla, tumhare saath mein. You made the day better. Aur isi note par tada bye bye from me. Mujhe connect karo Insta aur X par. Mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: चल रुचि, अब ना हम इन लोगों से कभी बात नहीं करेंगे। ऐसा बोलकर हम जाते तो थे, लेकिन थोड़ी देर में वापस भी आ जाते थे।
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. यार बचपन में कितना सिंपल था ना, लड़ाई होती थी तो हम कुछ देर बात नहीं करते थे, ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन बात नहीं करते थे, लेकिन एक कट्टी के बाद अब्बा भी हो जाता था और ये डेफिनेट होता था कि कट्टी के बाद तो अब्बा हो गया ही होगा। हम बड़े हुए तो ईगोज भी बड़े हो गए, अब अब्बा होने में साल लग जाते हैं और कभी तो साल भी काम नहीं कर पाते। बचपन में अब्बा करना कितना सिंपल था ना, तूने ऐसा बोला था ना रौनक को, अब उसे सॉरी बोल, और एक सॉरी से ना सबका दिल पिघल जाता था। लेकिन अडल्टिंग में सॉरी कौन पहले बोलेगा, इसमें ही ईगो अटक जाता है। आपको नहीं लगता हमने बड़े होते होते खुद को और लाइफ को भी कॉम्प्लिकेट कर दिया है? बचपन में सिर्फ एक ही चीज कॉम्प्लिकेटेड लगती थी, एंड दैट वाज मैथमेटिक के सम्स, और अब सर से लेकर पांव तक कॉम्प्लिकेशन ही कॉम्प्लिकेशन। चलो अब इन कॉम्प्लिकेशंस की गुत्थियों को सुलझाते हैं, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, और गाड़ी जब आगे बढ़ती है इस वक्त तो मिड डे मोहब्बत की गाड़ी 90 के गियर में लग जाती है, और मैं आपसे कहती हूँ स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: घर पर नया नया सीडी प्लेयर आया था, सारे कजन्स इकट्ठे हुए थे और मौका था कि यार कोई नई फिल्म देखते हैं। पता हमने कौन सी फिल्म देखी? चाइना टाउन।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, Chinatown was a film जिसको देख करना हमने बड़े मजे किए थे। Because of the reason कि यार ये फिल्म थ्रिलर भी थी और कॉमेडी भी थी। क्या हंसे थे और क्या घबराए थे, दोनों ही चीजें हमने एक साथ करके मिक्स्ड इमोशंस वाला जोन जो हो जाता है ना, वो हुआ था इस फिल्म को देखते हुए। लेकिन बिहाइंड द सीन की बात आपको बताती हूँ कि जब ये फिल्म लॉन्च हो गई थी, कि ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि ऐसी ऐसी एक फिल्म आने वाली है, सो उस वक्त जो कास्ट थी दैट वॉज अनिल कपूर, अक्षय कुमार, रानी मुखर्जी एंड विवेक ओबरॉय। लेकिन सारे के सारे स्टार्स जो थे ना, वो अपनी अपनी वजहों की वजह से ड्रॉप्ड आउट ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसके चलते अक्षय खन्ना अनिल कपूर की जगह आए, शाहिद कपूर अक्षय कुमार की जगह आए, करीना कपूर रानी मुखर्जी की जगह आई एंड फाइनली उपेन पटेल जो थे ही वॉज रिप्लेस्ड बाय विवेक ओबरॉय। एंड ये उपेन पटेल की डेब्यू मूवी थी। सैडली उन्होंने लीड रोल में तो ऐसी कोई खास मूवी करी नहीं, लेकिन डेब्यू फिल्म में ही वो वायरल से हो गए थे, अपनी एक्टिंग की वजह से नहीं। एक्चुअली हुआ ये कि इस फिल्म के अंदर उपेन पटेल का जो नंबर दिया गया था, लाइक बोला गया था वो नंबर, दैट टर्न्ड आउट टू बी अ रियल नंबर, और वो भी मुंबई के किसी डॉक्टर का नंबर था, जिसको कि ये फिल्म रिलीज होने के बाद न जाने कितने कॉल्स आने लग गए थे कि वो बंदा जो है वो परेशान ही हो गया था। बेचारे उपेन फेमस भी हुए तो किस वजह से। खैर, पब्लिसिटी कैसी भी हो, पब्लिसिटी होती है, ये भी एक बात है। चलो जी, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: वैसे हमारी रगों में इतना बॉलीवुड दौड़ता है कि अगर कोई आ आ आ करता हुआ अटक जाएगा ना तो हम उस बात को पूरा करते हुए कह देंगे आशिकी में तेरी जज जज जाएगी जा मेरी
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड ये गाना क्या था मेरे यारा, चाइना टाउन का ये गाना वाज अ हिट अपने जमाने का। बाय द वे चाइना टाउन वाज डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड ये फिल्म उनके सिग्नेचर स्टाइल में बनाई गई थी। और उनका सिग्नेचर स्टाइल पता है क्या है, वो ये है कि उनकी जितनी भी थ्रिलर्स आती है ना उसका ट्विस्ट यही होता है कि हर एक इंसान जो कि उस फिल्म में नजर आ रहा होता है ना, हर एक इंसान के ऊपर हमारा शक जा रहा होता है कि यार ये भी मर्डर हो सकता है, नहीं यार मर्डरर तो ये लग रहा है, नहीं नहीं नहीं मर्डरर तो वो है, और फिर मर्डरर तो अंकल निकले। एंड इस फिल्म में ना सिर्फ अब्बास मस्तान का सिग्नेचर स्टाइल इस्तेमाल हुआ है, इस फिल्म में जो वो लैविश मैंशन दिखाया गया है विच वॉज द चाइना टाउन विला नंबर 36 जहाँ पर कि वो मर्डर होता है, उसको बनाने के लिए भी बड़ा दिमाग लगाया गया था। एंड उस पूरे बंगले को स्पेशली इस मूवी के लिए बनाया गया था और बहुत जबरदस्त तरीके से इस तरीके से उसको स्टाइल किया गया था कि ना उस बंगले से ना मिस्टीरियस वाइब्स आनी चाहिए, विच आई थिंक दे वर सक्सेसफुल इन डूइंग। लेकिन एक और बात ऐसी है इस फिल्म के बारे में जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, और वो ये कि उस दौर में सबसे एक्सपेंसिव गाना जो बना था वो चाइना टाउन का गाना था जिसमें उपेन पटेल और ईशा कोप्पिकर हैं। उस गाने को बनाने के लिए 30 लाख रुपए लगाए गए थे जो कि अच्छा खासा बजट था उस जमाने के हिसाब से, इनफैक्ट आज के टाइम पर भी होगा यार। वो अलग बात है कि आजकल 30 लाख रुपए में कोई फ्लैट नहीं आएगा, लेकिन हाँ 30 लाख रुपए में कोई अच्छी खासी हाई एंड मॉडल की गाड़ी जरूर आ जाएगी। वैसे तो यूजुअली कहते हैं कि पैसा बोलता है, लेकिन जब चाइना टाउन में एक गाने के लिए इतना पैसा लगाया गया तो पैसा भी गाने लगा। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रिमेम्बरिंग द वेरी टैलेंटेड एक्टर मुकुल देव और हमारे बचपन का बहुत ही पॉपुलर टीवी शो घर वाली ऊपर वाली याद आया
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा। आज इतने सारे चैनल्स और इतने सारे कंटेंट के बीच में ये एक शो मुझे बैठे बैठे याद आया व्हेन आई वाज रिमेम्बरिंग मुकुल देव एंड आई रियलाइज्ड कि हाँ यार मुकुल देव ने भी तो हमें कितना हंसाया है ऑन स्क्रीन। द स्टोरी वॉज अबाउट घर वाली ऊपर वाली पापा एंड सनी यानी कि पापा जिनका नाम रवि था इस सीरियल के अंदर जो मुकुल देव ने प्ले किया था कैरेक्टर उनकी एक करंट वाइफ होती है और एक वाइफ जो परलोक सिधार चुकी थी जिनका की बेटा होता है सनी और बेचारा रवि बीवी जिंदा हो या ना हो दो बीवियों के बीच में फंस के कुट के रह जाता है जहाँ से निकल के आती थी खूब सारी कॉमेडी एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। ये एक ऐसा शो था जिसको कि बच्चे और बड़े साथ बैठकर एंजॉय किया करते थे। ऐसा नहीं था कि हम इस शो को अपने बड़ों की वजह से आदतन देखा करते थे और फिर ग्रेजुअली हमें ये पसंद आया था, नहीं ये हमारी फर्स्ट चॉइस हुआ करती थी। इनफैक्ट बड़ों की भी फर्स्ट चॉइस हुआ करती थी। आई एम श्योर सारे के सारे फादर्स जब ये शो देखा करते होंगे ना उनके दिल में काफी हद तक एक सॉफ्ट कॉर्नर रवि के लिए हुआ करता होगा। हे बाय द वे आपको पता है इस सीरियल के अंदर जो बच्चा था सनी जो अब बड़ा हो गया है एंड बंदे का नाम इन रियलिटी इज मिक्की धमेजानी जो कि डॉक्टर बन चुके हैं, ऑप्थमोलॉजिस्ट है बंदा। कितने सारे ऐसे चाइल्ड आर्टिस्ट है ना जो बचपन में हमने कितने सीरियल्स और फिल्मों में देखे और उसके बाद आज उनका कहीं नामो निशानी नहीं है। ये उनमें से एक है जिनका नामो निशान मुझे मिल गया फाइनली, तभी तो आपके लिए मिडडे मोहब्बत पर लेकर आई। यू ट्यून इन विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: उदित नारायण, अलका याग्निक और प्रशांत की आवाज में दिस गाना इज फ्रॉम द फिल्म फिजा, आजा माहिया। मैं इस गाने को जब कभी देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि यार ये भी एक टाइम था जब ऋतिक रोशन यूज्ड टू बी सो यंग। आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एजिंग, ऑफ कोर्स दैट इज टोटली नेचुरल, बायोलॉजिकल, ये तो होता ही होता है। बट आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ द फैक्ट कि कितनी जल्दी वक्त जो है वो पलट गया। नहीं मतलब अभी ऐसा लगता है कि यार कुछ ही टाइम पहले की तो बात है जब ऋतिक रोशन ने अपनी डेब्यू फिल्म करी थी एंड एवरीबडी वॉज गोइंग क्रेजी अबाउट हिम, और आज सारे नए एक्टर्स आ गए हैं, लॉटी बदल गया यार एक्टर्स का। वक्त भी कैसे चुटकी बजा के गायब हो जाता है ना, पता ही नहीं लगता। चलो यार, इससे पहले कि ये वक्त भी निकल जाए, मैं आगे बढ़ती हूँ।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना,
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आगे बढ़ते हुए मैं आपके लिए लेकर आती हूँ मान ना मान करो गानों की पहचान, जहाँ पर दो गानों को आपस में मिक्स करके मैं आपके लिए सुना देती हूँ और आपको पहचानना होता है कि ये दो गानों की जो धुनें आपने सुनी है ये कौन से गानों की है। तो जी, आज का जो मिक्स है वो है कुछ यूं।

बस जी डीएम कर दो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, अपना नाम, अपने शहर का नाम और इन दोनों गानों के नाम लिखकर मुझे भेज दो और स्टे ट्यून्ड रहो विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

Mirchi. It's hot.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: जितना जितना मैं दुनिया को समझती जा रही हूँ ना, मुझे एक और बात समझ में आ रही है कि राजेश रोशन के लिए ना एक गाना मेरी तरफ से होना चाहिए, एंड दैट इज कॉपी ना किया तो बोलो ना बोलो क्या किया।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और वक्त के साथ साथ मुझे ये भी समझ में आ रहा है मेरे यारा कि यार हम कहां अन्नू मलिक और प्रीतम दा को ही हमेशा उंगलियों से पॉइंट आउट करते हुए बोल रहे होते हैं कि इन्होंने कॉपी किया। अरे बहुत सारे लोग हैं जिनमें से राजेश रोशन भी एक ऐसे इंसान है जो अक्सर अपने गानों का कंपोजिशन कहीं इधर उधर से लेकर आते हैं। एंड द सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म क्रिश, कौन सा गाना? ऑफ कोर्स अब तक तो आपको पता लग ही गया होगा, लेकिन फिर भी आपको सुना देती हूँ। Well, इसका म्यूजिक इज टेकन फ्रॉम अ टर्किश फोक सॉन्ग जिसका नाम था सेडन डेडन, एंड दिस सॉन्ग वॉज एक्चुअली कम्पोज बाय अ बैंड जिनका नाम था मेहतर। बट आई मस्ट टेल यू अबाउट द ओरिजिनल गाना बिकॉज ये एक 20th सेंचुरी का कॉम्पोजिशन है, ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स अ टर्किश फोक सॉन्ग। तो ये ऑटोमन मिलिट्री के लिए म्यूजिक बनाया गया था किसी जमाने में, और उसी म्यूजिक का रिवाइवल किया था मेहतर बैंड ने, जो कि ऑफ कोर्स राजेश रोशन ने सुना और फिर दिल ना लिया। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: There was this moment in K3G जब करीना कपूर ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन तहे दिल से चाहती थी कि पू बनी पार्वती अब ये हो ही जाए, लेकिन वो इतनी डेस्परेट थी कि वो ऐसा कर जाएंगी, ये तो हमें करण ने ही बताया।
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और जब K3G की शूट हो रही थी, at that time, करण जौहर ने एक इंटरव्यू में बताया कि there was this scene, आपको और मुझे, हम दोनों को ये सीन याद है बहुत अच्छी तरीके से, जब शाहरुख खान और जया बच्चन एक दूसरे से सालों बाद मिलते हैं, thanks to Ritik Roshan। And होता ये है कि दूर से काजोल

ऑल्सो इन द फ्रेम हु इज वॉचिंग. यू नो यहाँ माँ बेटे जो है वो इतने सालों बाद मिल रहे हैं. काजोल के इमोशन जस्टिफाइड, ऋतिक रोशन के इमोशन जस्टिफाइड, लेकिन पू यू नो व्हाट रियली हैपेंड वाज कि जब ये सीन शूट हो रहा था एट दैट टाइम करण जौहर ने पहले ही बोल दिया था कि नो मतलब बहुत ज्यादा रोना नहीं है लेकिन रोना है. और जैसे ही करण जौहर ने बोला एक्शन तो करीना कपूर भय करके रोने लग गई, जिसपे करण जौहर को थोड़ी देर बाद बोलना पड़ा कि तुम क्यों इतना रो रही हो, वो तुम्हारा भाई नहीं लगता, वो तुम्हारे पापा नहीं लगते, तो व्हाई इज इट दैट तुम्हारा कैरेक्टर इतना रो रहा है. जिसका कमबैक जवाब करीना कपूर ने करण जौहर को ये दिया कि आई एम एन एक्टर नाउ, आई हैव टू प्रूव माय सेल्फ बिकॉज देयर वर एक्टर्स लाइक अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, काजोल हु वर देयर इन द फ्रेम्स ऑफ कोर्स. करीना को लगा कि यार मैं कब एक्टिंग करके बताऊंगी यार, इस पू के अंदर जो पार्वती है वो आखिर कब तक चुप बैठेगी. फाइनली एक दिन तो उसको निकल कर आना ही है. तो करीना ने सोचा कि आज ही शायद वो दिन है, बट नॉट रियली. आई मीन ऑफ कोर्स उसको रीशूट किया गया एंड देन थोड़े बहुत करीना के इमोशंस दिखाए गए ऑन स्क्रीन, नॉट द बाल्टी भर के रोना वाला सिनेरियो. हाँ, अब एक बात बताओ, आप अपने बॉस को अपने काम को लेकर इतना जस्टिफाई करते हो जितना करीना कपूर जस्टिफाई करने चली थी? डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा. और अभी के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डियर सोशल मीडिया और फोन के चुराए हुए वक्त,
2: यादों को चिट्ठी।
1: तुम्हारी बड़ी याद आती है यार, वो दिन जब हम बेफिक्र होकर गलियों में खेला करते थे, जब दोस्तों से मिलने के लिए घर के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे, जब बातचीत आंखों में देखकर होती थी और जब हंसी का शोर सिर्फ दिलों तक नहीं पूरे माहौल में गूंजता था। तब शामें छतों पर कटती थी, तारों को निहारते हुए सपने बुने जाते थे, किताबों के पन्नों की खुशबू में घंटों डूबे रहते थे और खत लिखना वो एक एहसास हुआ करता था। हर एक लफ्ज में इमोशंस जिंदा रहते थे। आज फोन की स्क्रीन पर उंगलियां चलती हैं, पर रिश्तों में पहले जैसी गहराई नहीं है यार। दोस्त ऑनलाइन तो हैं, लेकिन पास नहीं। दिल की बातें अब स्टेटस में बदल गई हैं और खुशियों को लाइक्स और कमेंट्स में गिनने लगे हैं। मेरे प्यारे स्मार्टफोन और सोशल मीडिया में खोए हुए वक्त, दिल आज भी तुम्हारी तलाश में ही है। काश फिर से वो दिन लौट आए जब हम सच में जिया करते थे, ना कि सिर्फ ऑनलाइन मौजूद रहते थे। तुम्हारी याद में खोई हुई इंसान, तुम्हारी सारा, जो आज भी तुम्हारी राह तकती है। You tune in with me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi, it's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में ओम शांति ओम से ये गाना गूजबम्स दे देता है यार।
0: मिर्ची 90s कैसेट।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, गूजबम्स तो इस गाने ने दिए हैं एंड आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द म्यूजिक जो कि विशाल शेखर ने कंपोज किया है। बिकॉज यू नो देर आर टाइम्स जब आप इस गाने को सुन रहे होते हो और पूरे खो जाते हो उस गाने को सुनते सुनते ना, तो द म्यूजिक टेक्स यू टू अ डिफरेंट वर्ल्ड। आई डोंट नो हाउ डज म्यूजिक हैज दैट मैजिक टू टेक यू टू अ डिफरेंट वर्ल्ड, बट येस इट डज हैपन। ऊपर से सोने पे सुहागा आर द लिरिक्स ऑफ दिस गाना। वेल, ब्यूटिफुल लिरिक्स आई मस्ट से। एंड ये जो लिरिक्स है ना इस गाने के, ये क्लियरली इस बात को दर्शाते हैं कि जब आपको कोई इंसान या कोई चीज या कोई सिचुएशन भी ले लो यार, बहुत पसंद आ रही होती ना बहुत ज्यादा, तो आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि आप उसे एक्सप्लेन कैसे करो कि ये कितना अच्छा लग रहा है या कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस गाने में जब बंदा बंदी के लिए ये लाइन्स गा रहा है ना कि तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी जुबा में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सको। ओए होए, मैं आपको सच बात बताऊं, ये फीलिंग मुझे कब आई है, प्यार मोहब्बत में नहीं आई है। अक्सर ऐसा होता है ना कि रात के अंधेरे में आप छत पर चढ़ जाते हो और चांद देख रहे होते हो, एंड मेरे साथ तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि चांद को देखने के बाद ना एक अलग ही एनर्जी आती है बॉडी के अंदर। और एक टाइम ऐसा आता है जब आप आसमान में चांद तकते रहते हो ना, आपको वो चांद इतना खूबसूरत लग रहा होता है, इतना खूबसूरत लग रहा होता है कि आपका दिल कर रहा होता है कि इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, और मैं इस बात को किस तरीके से बयां करूं कि चांद कितना खूबसूरत है। और तभी ये लाइंस मेरे दिमाग में भी अक्सर आई है कि तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कि यार तुम दिख तो रहे हो आसमान में, तुम्हें देख तो रही हूँ मैं, लेकिन तुमको पाकर भी मैं एक तरीके से तुम्हारे अंदर खो चुकी हूँ। और अगर मैं कहना भी चाहूँ ना तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैं किस जुबान में ये बात कहूँ, क्योंकि मेरे पास लफ्ज नहीं होते हैं कि चांद कितना खूबसूरत लग रहा होता है। इनफैक्ट हर बार मैंने एक कोशिश करी है कि अपना फोन निकाला है और उस चांद की खूबसूरती को कैप्चर करने की कोशिश की है, लेकिन मेरे पास क्या, फोन की लेंस के पास भी वो जुबान और वो नजरे ही नहीं है कि वो उसकी खूबसूरती को जिस तरीके से वो आसमान में नजर आ रहा होता है ना, अपने लेंस में कैप्चर कर पाए। अब बताओ आपके साथ कभी ऐसा हुआ है चांद को लेकर? इंसान को लेकर तो अक्सर इंसान के साथ ऐसा होता ही होता है। तो चलो, दोनों में से जो भी आपके साथ पहले हुआ है या हुआ है, डीएम कर दो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, उसका जिक्र करते हुए। और अभी फिलहाल के लिए यही गाना चलाते हुए मैं यहाँ से जाती हूँ और आपसे कहती हूँ हम है राही प्यार की, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा मैं मिल ही जाऊंगी आपको ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

कई बार मुझे समझ नहीं आता कि पुरानी फिल्मों के नाम किस बेसिस पे रखे जाते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं जिनका फिल्म के पूरे सब्जेक्ट से, पूरी फिल्म से ऐसे कोई खास तालमेल नहीं है। जैसे आपकी कसम मूवी, तो इस फिल्म में राजेश खन्ना एक शक्की हस्बैंड प्ले करते हैं जो अपनी वाइफ मुमताज पे शक करते हैं और अपनी शादीशुदा लाइफ, लव लाइफ पूरी ऐसे तबाह कर लेते हैं। अभी इसमें आपकी कसम का क्या मतलब है टाइटल का, है ना? शक्की पति, ऐसे ऐसा नाम ज्यादा सूट करता है इस फिल्म को। खैर जो भी है, आपकी कसम गाना बहुत अच्छा है। पुरानी जीन्स पर सुन लेते हैं, मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

जल भुन के खाक हो गए थे ऋषि कपूर और काफी इनसिक्योर भी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई सागर फिल्म को ऐसी बहुत बड़ी फिल्म माना जा रहा था, ऋषि कपूर डिंपल कपाड़िया के साथ वापस आ रहे हैं, बॉबी का सक्सेस रिपीट होगा, ये वो फलाना डिमका, दोनों साथ में आए, लेकिन फिल्म की सारी लाइमलाइट कमल हासन साहब ले गए। और कमल हासन साहब और डिंपल कपाड़िया का जो उसमें सॉर्ट ऑफ दोस्ती रिश्ता दिखाया गया था उसको ज्यादा पसंद किया गया। और तो और इस फिल्म के लिए डिंपल कपाड़िया को बेस्ट एक्ट्रेस का और कमल हासन को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया, विच काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड ऋषि कपूर, विच इज एक्चुअली नेचुरल ऑल्सो यार, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रोफेशन और लाइफ होता है। आप अपने साथ वालों के लिए खुश होते हो लेकिन अपने लिए भी दुखी हो जाते हो जीवन में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani jeans with Jaru, only on Mirchi.

0: लिरिसिस्ट गुलशन बावरा ने पुराने टाइम के और लिरिसिस्ट के कंपैरिजन में गाने थोड़े कम लिखे हैं, लेकिन जो लिखे हैं
1: क्या लिखे हैं?
0: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक बार उनसे उनके फेवरेट गाने के बारे में पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।
2: ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि मेरा सबसे पसंदीदा कौन सा गाना है, लेकिन मुझे एक गाने का जरा वो जो मेरे दिल पे चोट लगी थी और जो मैंने लिखा था वो मुझे काफी अच्छा लगता है। वो है चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ा। वैसे तो मेरे देश की धरती सोना उगले वो भी बहुत पॉपुलर हुआ, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, इन दोनों गानों पे मुझे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले, लेकिन वो गाना मुझे कुछ चांदी की दीवार न तोड़ी दिल को थोड़ा सा।
0: वेल ये तो हुई इनके फेवरेट गाने की बात, लेकिन यहाँ पे हम सुनेंगे एक गाना जो पता नहीं कितने लोगों का, शायद पूरी जेनरेशन का फेवरेट गाना है, क्योंकि इसके इतने कवर वर्जन्स बन चुके हैं, इसके रीमेक्स रीमिक्सेस बन चुके हैं। मुझे तो ये गाना बहुत पसंद है, आई एम श्योर आपको भी पसंद है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची के साथ मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

बचपन में ऐसे लगता था इस गाने में बोल रहे हैं कि आशियाना ढूंढते हैं, साबुदाना ढूंढते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। बड़े ओके समझ में आया आबुदाना का मतलब, इस गाने में भी रियल लाइफ में भी खाना पीना रोजी रोटी, और जो रोजी रोटी कमाने के चक्कर में अपने घरों से दूर रह रहे हैं, अकेले भी रह रहे हैं, वो कुछ लाइन्स से बहुत रिलेट करेंगे। ये लाइन्स शहपर रसूल नाम के शायर हैं, इन्होंने लिखी हैं। कोई साया न कोई हम साया, कोई साया न कोई हम साया, आबोदाना ये किस जगह लाया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

1981 की फिल्म कुदरत 1979 में बननी शुरू हुई थी, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से डिले होती गई। जैसे प्रोड्यूसर बीएस खन्ना, डायरेक्टर चेतन आनंद और एक्टर राजेश खन्ना के बीच में काफी डिफरेंसेस प्रॉब्लम्स आ रही थी। राजेश खन्ना बाय देन हैड स्टार्टेड थ्रोइंग अ लॉट ऑफ टैंट्रम्स। एक चीज जो सुनने में आती है कि इस फिल्म में मेन लीड में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी थे, साथ में राजकुमार, प्रिया राजवंश एंड विनोद खन्ना भी थे। और विनोद खन्ना की कुर्बानी फिल्म जब रिलीज हुई तो वो बहुत पॉपुलर हो गए। उनकी इस पॉपुलैरिटी से राजेश खन्ना थोड़े से इनसिक्योर हो गए और कुदरत फिल्म के पोस्टर्स जो लगे थे, उनकी जो भी प्रमोशन हो रही थी, उससे उन्होंने विनोद खन्ना की फोटोज जो हैं वो हटवा दी। ऐसा सब सुनने में आता है, और भी बड़ा कुछ हुआ था। करते रहेंगे बातें, लेकिन अभी बातों पे ब्रेक, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची

0: Mirchi, it's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

1969 की फिल्म तुमसे अच्छा कौन है हिट हो गई थी बिकॉज इसमें हीरो हीरोइन की कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटीज थी। एक तरफ जहां शम्मी कपूर साहब का पागलपन था, वहीं बबीता कपूर का पॉइज ग्रेस। वैसे बबीता कपूर ने एक्चुअली अपने देवर ससुर के साथ इस फिल्म में काम किया, अंकल इन लॉ क्या बोलेंगे। खैर रणधीर कपूर से तो उनकी शादी बाद में हुई थी। कमिंग बैक टू तुमसे अच्छा कौन है मूवी, तो शम्मी कपूर का पागलपन एंड बबीता की ग्रेस। ऐसा सुनने में आता है कि बबीता जी को बहुत ज्यादा ऐसे मेहनत करनी पड़ी थी, बहुत ज्यादा रिहर्सल करनी पड़ी थी टू मैच अप विद शम्मी कपूर की एनर्जी। फिल्म भी हिट हुई थी और इसके गाने भी पॉपुलर हुए थे, खास करके ये वाला जो हम सुनने वाले हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: It's hot.
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: भाई वैसे तो अनुराधा पौडवाल 90s की प्रोमिनेंट सिंगर रही हैं, लेकिन इनकी शुरुआत 70s में ही हो गई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक इंटरव्यू में इस बिगनिंग के बारे में सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: मैंने शुरू किया 1973 से फिल्म अभिमान से। अभिमान का उस वक्त बैकग्राउंड चल रहा था एंड बरमिंदर दा वांटेड अ श्लोक, सो ही टोल्ड माय हस्बैंड अरुण जी जो ही वाज असिस्टेंट डायरेक्टर टू बरमिंदर कि मुझे कोई संस्कृत का श्लोक चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ये ट्यून किया है तो इसे थोड़ा घर के टेप रिकॉर्डर के ऊपर तुम थोड़ा गा दो। जैसे वो लेके गए बरमिंदर के पास तो उन्होंने पूछा है किसने गाया है, देन ही सेड कि व्हाई डोंट वी रिकॉर्ड दिस, इन्हीं की आवाज में हम श्लोक रिकॉर्ड करते। सो दैट टर्न्ड आउट टू बी मतलब प्योर डेस्टिनी एंड That turned out to be the beginning of my career.
0: और actually 70s में उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गाने गाए, कुछ बहुत हिट फिल्मों में भी गाने गाए, लेकिन उनके गाए गाने उतने हिट नहीं हुए। उनके करियर का पहला हिट गाना आया 80s में। अजी बहन और भाइयों, उस साल का बेहद लोकप्रिय गीत जो 1984 की गीत माला में अब पायदान नंबर एक पर था, फिल्म का नाम हीरो, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने इसे सुरों से सजाया, आनंद बख्शी के बोल और आवाज मनहर और अनुराधा की। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स ऑन मिर्ची।

एक थप्पड़ की गूंज सुनी थी अमिताभ बच्चन साहब ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये फिल्म थी 1978 की कस्मे वादे, जिसमें अमिताभ बच्चन और राखी का एक सीन था। सीन में ऐसा कुछ होता है कि राखी जी को अमिताभ बच्चन को एक थप्पड़ मारना होता है, तो अमिताभ बच्चन थोड़ा कंफ्यूज हो गए। उनको ऐसा लगा कुछ टाइमिंग गड़बड़ हो गया, जैसे उनको लगा कि तीन डायलॉग के बाद थप्पड़ पड़ेगा, लेकिन वो थप्पड़ दो डायलॉग के बाद ही पड़ गया। तो राखी जी ने एक बार एक इंटरव्यू में ऐसा शेयर किया था कि वो जो एक्सप्रेशन है उस फिल्म में थप्पड़ पड़ने के बाद वाला, अमिताभ का जो एक्सप्रेशन है एकदम हैरानी वाला, वो रियल है, बिकॉज उस टाइम वो थप्पड़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

भाई ये बड़े बड़े सिंगर्स जो इतने बढ़िया बढ़िया गाने गाते थे, इनको कितनी मुश्किल आती होगी कई बार सोचते हुए कि कौन सा गाना इनका फेवरेट है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। हो सकता है कोई ऐसा गाना हो जिससे उन्होंने पर्सनली रिलेट किया हो, जो उनका फेवरेट बन गया हो। जैसे लता मंगेशकर जी ने कई इंटरव्यूज में अपने फेवरेट गाने शेयर किए हैं, आएगा आने वाला महल फिल्म से, या प्यार किया तो डरना क्या मुगले आजम से, लग जा गले वो कौन थी फिल्म का। और एक और उनका फेवरेट गाना था जो वो अपने हर लाइव शो में, म्यूजिक टूर में गाती थी, अनामिका फिल्म का ये गाना। सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

ये तो हम जानते हैं कि देवानंद साहब अक्सर नए टैलेंट को फिल्मों में चांस देते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। पर क्या आप जानते हैं कि इन टैलेंट में शत्रुघ्न सिन्हा साहब भी शामिल हैं? शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने अपनी लाइफ में जो पहला एक्टिंग रोल साइन किया था वो देवानंद साहब की फिल्म प्रेम पुजारी के लिए था। उस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा दूसरे देश के मिलिट्री ऑफिसर का रोल निभाते हैं और शत्रुघ्न सिन्हा साहब के काम से इम्प्रेस होकर देवानंद ने फिर अपनी एक और फिल्म गैम्बलर में भी उनको एक अच्छा खासा रोल दिया था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: विनोद खन्ना साहब रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मतलब उनके फादर वेल टू डू अफ्लुएंट बिजनेसमैन थे और विनोद खन्ना साहब एक रिबेल टाइप के थे। अपनी टीनेजर में बहुत पार्टी वार्टी करते थे और ऐसी एक पार्टी में उनको सुनील दत्त साहब ने देखा और फिल्म ऑफर की। लेकिन ये बात जब उन्होंने अपने घर में बताई तो घर से तो मना हो गई। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में विनोद खन्ना साहब ने क्या शेयर किया था।
1: मैंने अपने फादर से ये कहा था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मैं उस वक्त 18 साल का था, 19 साल का। बिसाइड्स बीइंग थ्रोन आउट ऑफ द हाउस, बाकी सब इवन मेरे साथ वो चीजें हुई, पर वो एक रिबेलियन हो गई थी उस वक्त कि भाई मैं ये बनना चाहता हूँ, मुझे करने दीजिए। माय मदर वाज ऑलवेज सपोर्टिव एंड माय फादर हैड अ लिटिल हेसिटेशन बिकॉज़ ही वाज वरीड। आई केम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, ही वाज ऑल प्रिपेयर्ड टू यू नो पुट मी इनटू बिजनेस बिकॉज़ चेंज हिज एटीट्यूड लेटर व्हेन ही सॉ दैट आई यू नो दैट आई गॉट द सक्सेस दैट आई एंड आई डिजर्व टू बी वेयर आई वाज। ही वाज वेरी नाइस टू मी देन, बट इनिशियली तो उस वक्त तो हर कोई पेरेंट कोई किसी को जाने नहीं देता था फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री वाज द बिग बैड वर्ल्ड।
0: और आप सोचिए इस बिग बैड वर्ल्ड में उनकी शुरुआत विलन वाले रोल से हुई तो मम्मी पापा कितना ही घबरा गए होंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्च

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारों ओनली।

1965 में जब शमी कपूर जी की वाइफ गीता बाली जी की डेथ हो गई, तो उसके बाद शमी कपूर जब वापस काम पर आए तो उन्होंने पता है पहली चीज क्या शूट की थी? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो फिल्म थी तीसरी मंजिल और वो शूटिंग थी उस गाने की जिसे मरते दम तक शमी कपूर जी अपनी वाइफ गीता बाली जी से कनेक्ट करते रहे, रिलेट करते रहे। ये गाना था तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये जमी थम गया आसमान। सुन लेते हैं ये गाना पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.

0: Mirchi, it's hot.
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई, बजा।

0: फरहान अख्तर की प्लेलिस्ट में टॉप गाना कौन सा होगा पता है? दगा बाजरे है, दगा बाजरे।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और बड़े ही प्यार से वो डेडिकेट कर रहे होंगे ये गाना टू नन अदर देन रणवीर सिंह। हेलो जी, हाय। हाँ जी, आपको जरा अपडेट दे देती हूँ। बेसिकली FWICE यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉय ने रणवीर सिंह के खिलाफ एक नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्टिव अनाउंस किया है। अब चलिए इसके रीजन पे जाते हैं। सो बेसिकली फरहान अख्तर डायरेक्टोरियल अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म डॉन 3 में लीड रोल मिला था रणवीर सिंह को। इनफैक्ट अभी कुछ हफ्तों में इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू होने वाली थी, विच मीन्स प्री प्रोडक्शन का काम ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका था। बट बॉम्ब तब गिरा जब रणवीर सिंह ने इस मूवी से रातों रात एग्जिट ले लिया, जिसकी वजह से द फिल्म एंड द एंटायर टीम हु इज इन्वॉल्वड इन इट वो बीच मच धार में फंस गए हैं यार। एंड दैट इज द रीजन दगा बाजरे है, दगा बाजरे। वैसे रणवीर सिंह की टीम की तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया है कि लाइक ऑलवेज रणवीर अपने आप को ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी से दूर रखते हुए साइलेंस को चूज कर रहे हैं। बट मुद्दा तो ये है कि आपके चुप्पी साध लेने से क्या प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? चलो माना कि धुरंधर इतनी बड़ी सक्सेस हो गई कि आपका मन हो रहा है कि आप अपनी फीस बढ़ा दें, बट यार पैसों के चक्कर में अपने क्राफ्ट से नाइंसाफी तो नहीं करना चाहिए ना? बाकी तो समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Radio Mirchi, it's hot.
2: Mirchi, it's hot.